0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12:00 হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত আৰু 12:10 সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
2: वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ

फौजी भाइयों, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम गीत मनोरंजन, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर कार्यक्रम गुंजन और 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम नजराना का। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। फौजी भाइयों, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज आपके साथ रहूंगी मैं गुना प्रभा बोरा।

0: फौजी भाइयों लीजिए प्रस्तुत हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विनोद राठौर, संजय दत्त, प्राची और प्रिया माइकर की आवाजों में मुन्ना भाई MBBS फिल्म का ये गीत।
1: हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मन फिल्म का एक गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है संजीव दर्शन ने। आइए सुनिए गीत उदित नारायण और अलका याग्निक से।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल रविवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतिका, 1:40 का समय है कार्यक्रम शीर्षक संगीत का।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आएगा। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल के कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मनोरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले और मना डे की गाय इस गीत से। फिल्म का नाम है साधु और शैतान।

0: लीजिए अब सुनिए अशोक कुमार को आशीर्वाद फिल्म के इस गीत में।
1: बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ खुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुलपक डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोधनूर कोटनूर शोधनूर कोटनूर झुक झुक झुक झुक झुक झुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं हमजोली फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार।
1: चल शुरू हो जा, 1 2।

0: न करो लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
1: फिर
0: 1 2
2: चल शुरू हो जा, चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर।
0: 1 2

दिखने में कंगाल है पन राजा है दिल का, दिखने में कंगाल है पन राजा है दिल का। आ मैं बना देगा तुझे प्यार की मलका, कभी एक रोज आके मेरा झोपड़ा बस।

0: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए एक और गीत, फिल्म है प्यार दीवाना।
1: हाय हाय हाय, अरे किसको चाहूं और किसको ना चाहूं, किसको चाहूं किसको न चाहूं, हर सूरत है प्यार के साथ।

फौजी भाइयों, गीत मनोरंजन कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

फौजी भाइयों, इस वक्त आपके साथ हूं मैं गुना प्रभा बोरा लेकर कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और जसपिंदर नरूला के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है विरासत।

0: सब खड़ूस।
1: सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मधे की। अपना ये मान आगे।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे जन असमिया गीत। सबसे पहले सुनिए रामधेनु फिल्म का गीत अंगराग महंत की आवाज में।

अब सुनिए चमेली मेमसाब फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज में।

0: फौजी भाइयों लीजिए, अब सुनिए तराली शर्मा की आवाज में सुरेन सुर और पुतेक फिल्म का ये गीत।
1: मालिनी जोरी लगे मोर बेया लगे
2: सानी। मालिनी कौन?
1: बैस बाबर नातिनी।

0: Regional Military Administration Chief Taimur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Hugh Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।

0: मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का

0: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों, आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम नजराना। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है लहू के दो रंग फिल्म से, आवाज येसुदास की।

फौजी भाइयों, नजराना नजराना कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डोली फिल्म से, आवाज आशा भोसले की।

इसी के साथ फौजी भाइयों नजराना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यही होता है समापन। कल 12:10 पर आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: मजबूत हड्डियां, सुरक्षित कदम और स्वस्थ जीवन, इसी विश्वास के साथ करते हैं आज के रेडियो डॉक्टर की शुरुआत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। कहते हैं स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चूक, सड़क दुर्घटना, खेल के दौरान लगी चोट या फिसलन जैसी घटनाएं हमारी हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर केवल दर्द ही नहीं देता, बल्कि समय पर सही उपचार ना मिले तो लंबे समय तक परेशानी का कारण भी बन सकता है। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जी।
1: और साथ हैं डॉक्टर विनय सिंगला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किस दर्द या चोट को हम समझे कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर क्या होता है और इसका मुख्य कारण क्या है?
2: देखो, फ्रैक्चर के मेन कारण तो है कि चोट लगना, भले वो एक्सीडेंट हो, कहीं फिसल के गिरे या खेल कूद में भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज के कारण भी कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। कोई भी दर्द जो जरूर से ज्यादा हो रही है, उसमें सूजन आ रही है, तो उसमें फ्रैक्चर सस्पिशन हमेशा रखना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर को दिखा के भले वो एक्सरे करे, उससे निकाल लगाया जाए कि फ्रैक्चर है या नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई गिर गया, दर्द हो रहा है, तो क्या यही फ्रैक्चर का इंडिकेटर है या कुछ और भी हो सकता है? डॉक्टर विनय,
4: गिरने के बाद तो हमेशा हमें फ्रैक्चर का सस्पिशन करना ही चाहिए, लेकिन गिरने के बाद अगर पर्सन अपना अपर लिम या लोअर लिम यूज ना कर पाए, वजन ना दे पाए, जरूरत से ज्यादा दर्द हो, सूजन आ जाए, या कहीं ओल्ड एज पेशेंट जो ब्लड थिनर्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसमें गिरने के बाद अंदर खून इकट्ठा

0: पड़ जाता है, नीला रंग पड़ जाता है, ये सब कंडीशंस के अंदर हमें फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना चाहिए।
1: तो क्या इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं कि हाँ हमें डिफ्रेंशिएट कर सके हम?
2: हाँ, फ्रैक्चर्स के कई टाइप्स हैं मैडम। जैसे कि अगर फ्रैक्चर हुआ और कहीं उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसे हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। क्लोज फ्रैक्चर्स में बाहर से कोई जख्म नहीं होता, लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें उसका फ्रैक्चर का कॉन्टैक्ट एक्सटीरियर से हो जाता है, बाहर से हो जाता है, तो कीटाणु वहां जल्दी पहुंचते हैं और इन्फेक्शन होने का डर काफी हो जाता है, जिसमें हमें अर्जेंसी में उस इलाज करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने चाहिए, ये सब है उसमें।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं, जिनकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए।
3: जब भी किसी को फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे सूजन होगी और मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ की या पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमें खड़ा नहीं हुआ जाएगा या मूवमेंट नहीं करी जाएगी, तो ये मान लेना चाहिए कि फ्रैक्चर की काफी संभावना है और डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज कराया जाए। भले वो प्लास्टर करें, ऑपरेशन करें, किसी भी ढंग से करें, तो वो करना चाहिए।
2: यदि किसी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाए, वो गिर जाए या चोट लग जाए, तो वो क्या करे और क्या ना करे इमीडिएटली?
3: सबसे पहले को चोट लग जाए, कहीं जख्म नहीं है, सिर्फ क्लोज इंजरी है, तो बर्फ का सेक करें, कोल्ड फर्मेंटेशन इज बेटर। कोई गर्म पट्टी बांध दें, कोई स्प्लिंट होता है गले में डालने का, स्लिंग हो गया या कोई स्प्लिंट, गले का पट्टा, पैर का पट्टा, नी इमोबिलाईजर या कोई भी तरह का जो ब्रेस हो, बाइंडर हो, वो पहना जाए और वेट ना करे, इसके ऊपर वजन ना दे। कई कई चोटें ऐसी हैं वहां पे मालिश करने से ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोहनी का फ्रैक्चर हो गया, वहां मालिश करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। कोहनी की मूवमेंट में आगे चल के बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मूवमेंट काफी कम हो जाती है। तो जैसे कोहनी की कभी मालिश नहीं करनी चाहिए चोट पे भी। तो बाकी तो फिर जब एक्सरे होगा उसका इलाज अलग अलग है, किसी में प्लास्टर होगा, किसी में ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर ही बताएगा।
2: एक मैसेज हमारे पास ये है, लिखते हैं, आई एम सागर मखीजा फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई हैव टू क्वेश्चंस। इफ अ पर्सन फेल्स फ्रॉम अ बाइक ऑन रोड एंड इफ ही गेट्स फ्रैक्चर इन लेग, हाउ कैन वी टेक हिम टू हॉस्पिटल सो दैट इट डजंट गेट वर्स? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्योर द फ्रैक्चर? डॉक्टर विनय,
4: if the patient falls from the bike and the suspicion of fracture is there, it means when suspicion fracture is there, when there is a gross swelling and out of proportion pain is there, and there is the mobility at the bone site, means the bone fragments gets the improper mobility is there at the fracture site and the patient is having a severe pain. In that case, patient has to be mobilized to the hospital. In that case, if we have some wooden splint, we can tie it with a cloth and we can transport the patient to the hospital. Or if we don't have anything, we can tie both the legs along with that. Or sometimes we have some cast in the ambulance. In that case, we can put up a cast and transport the patient to the hospital.
2: एक और मैसेज है हमारे पास, लिखते हैं, RJ मैम और डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलर बोन का फ्रैक्चर कैसे पता चलता है, इसका क्या इलाज है और इसमें इतनी तकलीफ होती है, इसके लिए हम क्या करें, तो कृपया बताने का कष्ट करें। शिव मेरठ से। डॉक्टर जी
3: नमस्कार जी। कॉलर बोन, जैसे कि नाम ही है, हमारी जो कॉलर है उसके नीचे की जो बोन है, इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो इसमें ये सबक्यूटेनियस बोन, मतलब स्किन के नीचे की बोन है। इसमें जब भी फ्रैक्चर होगा, सूजन आएगी, तो एकदम से मालूम पड़ ही जाता है कि यहाँ इस हड्डी का टूटा है या कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो स्लिंग बांधा जाए, जब भी चोट लगे स्लिंग बांध के रखें, कफ एंड कॉलर स्लिंग बोलते हैं, गले से लेकर आपकी कलाई तक वो बांध के रखें और फिर उसके बाद में डॉक्टर से मिलें। अब इसके जो इलाज है, 90% केसेस तो बिना ऑपरेशन के ही ये ठीक हो जाता है। उसमें हम फिगर ऑफ एट बैंडेज, क्लेविकल ब्रेस बांधी जाती है, जो 1.5 से 2 महीने तक समय लगता है इस हड्डी को जोड़ने में। कई कई केसेस में जहां वो फ्रैक्चर जो है स्किन को पियर्स कर रहा हो या काफी दूर फ्रैगमेंट्स पड़े हैं, तो उनमें प्लेट्स लगाना और रॉड डालना, इस करके भी हम इस अस्थि को अच्छे से जोड़ सकते हैं।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
5: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
5: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
5: हाँ, पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
5: पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को, चाहे वो पेशेंट है या फिर बिल्कुल फिटाफिट गुड़म गुड़ है, कैसे उसे पता चले कि मेरी हड्डियों में कमजोरी है और या फिर मेरी हड्डियाँ मजबूत हैं? दूसरा सवाल कि बढ़ती उम्र में होता है कि हड्डियाँ ही बढ़ती हैं, नसें ही बढ़ती हैं, पर अब आवश्यकता ज्यादा नसें हड्डियाँ बढ़ जाए या धनुषनुमा हो जाए, आगे और झुक जाते हैं। लोग देखो बुढ़ापे में, अधेड़ अवस्था में जो होता है, ओल्ड एज में, लोग ही हड्डियाँ झुक जाते हैं, लोग झुक के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई शख्स क्या करे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज गाइड करें।
3: नमस्कार जी, राजेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि कैसे पता लगाएं कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हम एक्सरे से डेक्सा भी एक स्कैन होता है बोन मिनरलाइजेशन का, विटामिन डी के चेकअप होते हैं, कैल्शियम के चेकअप होते हैं, इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है उम्र में, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में काइफोसिस कहते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का खास लक्षण है। ठीक है, जैसे हमारी जो वर्टिबल बॉडीज है उनकी हाइट एंट्री आगे की तरफ से कम होती जाएंगी तो पीछे झुकाव आता जाएगा, कुब निकलती जाएगी, ये कमजोर हड्डियों की निशानी है। इसको करेक्ट करने के लिए अच्छा खान पान, कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइजेज, आपका बैठने का पोस्चर, जैसे हम सोफे पे बड़ी देर तक लीन करके बैठ जाते हैं, वो सब गलत चीजें हैं। और करेक्ट करने के लिए ब्रेसेस भी आती हैं, करेक्टिव ब्रेसेस भी आती हैं, जो पीछे आपका पोस्चर करेक्ट करे, बैठने का सही ढंग। तो ये कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज और इन चीजों से सही हो सकता है।
2: और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टेस्ट की बात करी, तो फ्रैक्चर की पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं?
3: फ्रैक्चर्स की पुष्टि के लिए सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो एक्सरे है मैडम। एक्सरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि इफ देयर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन देन इट मींस अ फ्रैक्चर। अगर हड्डी की कंटिन्यूशन में कहीं ब्रेक है तो वो फ्रैक्चर ही होता है। और दूसरी जांचें जिनमें मालूम पड़ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन चीजों से भी मालूम पड़ जाता है हमें फ्रैक्चर है या नहीं।
2: डॉक्टर विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के फ्रैक्चर है तो किन कंडीशंस में या सिचुएशंस में प्लास्टर लगाया जाता है या किन मामलों में ऑपरेशन करना पड़ता है?
4: आमतौर पे बच्चों में ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो होते हैं प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर प्लास्टर लगने के बाद भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन रहता है, वो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हड्डी ग्रो करती है वो टेढ़ापन ठीक हो जाता है। और लेकिन कुछ एक फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के अंदर भी जिसके अंदर ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है, जैसे मान लो एल्बो के अंदर फ्रैक्चर होता है, अगर फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस होता है या एल्बो के अंदर बाहर की तरफ जिसको हम लेटरल कंडाइल कहते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर्स होता है, इन कंडीशंस के अंदर हमें ऑपरेशन करके उसके अंदर बिना खोले हुए, बिना चीरा दिए हुए दूरबीन के नीचे हड्डी को बिठाकर तारें डालनी पड़ती हैं। एडल्ट पेशेंट के अंदर हम आज की डेट में जैसे हम डिक्टम कहा जाता है, लाइफ इज द मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज द लाइफ, इट मींस के वी हैव टू मेक द पेशेंट मोबिलाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें पेशेंट्स को आज की डेट के अंदर बहुत डिफरेंट मॉडलिटीज आ गई हैं जिसके अंदर हम पेशेंट फ्रैक्चर्स को बिना चीरा दिए हुए लेजर के द्वारा अंदर रॉड डाल देते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी जल्दी हो जाती है और हड्डी भी जल्दी जुड़ जाती है, देर इज नो स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। बट समटाइम पेशेंट जब फ्रैक्चर्स अनडिस्प्लेस्ड है और इन एक्सेप्टेबल कंडीशन है एंड पेशेंट इज नॉट विलिंग और द पेशेंट इज नॉट मेडिकली फिट फॉर द सर्जरी, इन दोज केसेज वी कैन अप्लाई द प्लास्टर ऑल्सो।
2: जैसे बच्चों की अगर बात करी, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनके फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे उनकी बोन्स पे इफेक्ट ना आए, ग्रोइंग एज पर, ग्रोइंग हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े?
3: जो कई के फ्रैक्चर्स ना बच्चों में खास ध्यान देने वाली बात है, जिसमें बच्चों के बोन एंड्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो ग्रोथ प्लेट्स बच्चे की बोन को लंबा कर रही हैं और वो जब बच्चा मैच्योरिटी अटेन करेगा 15-20 साल की एज में तब जाके वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड होंगी, अगर उस तरफ फ्रैक्चर हो जाए तो वो जुड़ने के बाद भी बोन ग्रो होगी वो टेढ़ी ही होती जाएगी, डेट विल क्रिएट डिफॉर्मिटी। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाए तो चल जाएगा, ऐसे केसेस में हमें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। इसे एपिफिजियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं या ग्रोथ प्लेट के अराउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसमें अच्छा 100% अलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इज मस्ट, ठीक है। बाकी जो बीच की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं, जो एंड्स ऑफ द बोन्स नहीं हुए बीच में हुआ, उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा तो बच्चा रिमॉडल कर जाता है, जब बच्चा ग्रो होता है बोन रिमॉडल्स एंड डिफॉर्मिटी गेट्स करेक्टेड, बट नॉट एट द बोन एंड्स, जहां किनारे हैं यानी कि कोहनी के पास वाले, घुटनों के पास वाले हड्डियां जो फ्रैक्चर होती हैं बच्चों में, उनमें ऑपरेशन की काफी संभावना रहती है क्योंकि 100% अलाइनमेंट लाना पड़ता है।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
6: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही
6: हैं? मैं विश्व बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा से।
2: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
6: हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, नवम्बर 30, 2024 को मेरी सर्जरी हुई थी, मैं गिर गई थी, तो मेरा फ्रंट का फेमर वॉल टूट गया था, तो मेरी सर्जरी हुई तो हो भी गई जल्दी और मैं रिकवर भी बहुत जल्दी कर गई।
3: आपका आपकी एज क्या है?
6: मैं 75 प्लस हूँ।
3: ठीक है मैडम।
6: नवंबर 24 में मेरा ऑपरेशन
3: था। हाँ मैडम, ठीक है।
6: और मैं 27वां साल है, मैं योगा में हूँ। तो उससे वो मेरे डॉक्टर कहते शायद आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी से ज्यादा ठीक है, तो आप जल्दी रिकवर कर गए। अब डॉक्टर साहब ऐसा है कि नीचे बैठना बिल्कुल मना होता है।
3: मैडम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था जो
6: हाँ जी, हाँ जी।
3: जो हिप के एकदम

0: साथ में, तो इसमें हाँ इसमें हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं।
1: हाँ जी, रिप्लेस की है।
0: जिस शेप की वो आपका जो हेड था वो उसमें ब्लड प्रवाह खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है, इसलिए 75 की एज में उसे जोड़ के हम स्क्रू एंड प्लेट्स वगैरह किसी चीज से जोड़ते नहीं, उसको निकाल के उसी शेप का दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है हेड। ठीक है ना, जिसे लेमैन लैंग्वेज में चूल्हा बदलना बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसलोकेशन।
1: ठीक है,
0: तो डिसलोकेशन ना हो इसलिए कहते हैं कि नीचे ना बैठें, आलती पालती ना मारें, स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेगिंग हैज टू बी अवॉइडेड थ्रू आउट योर लाइफ।
1: डॉक्टर साहब, जैसे मैं क्लास करती हूँ, मैं बेड पर लेट के कर सकती हूँ?
0: अब बेड पर लेट के कर सकती हैं, बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, बिल्कुल
1: करती हूँ,
0: हाँ खड़े होके भी कर सकती हैं, बस आलती पालती नहीं मारनी है और नीचे नहीं बैठना है।
1: नहीं नहीं, वो नहीं, बेड पर उल्टा भी लेट के कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम।
1: नहीं नहीं, मेरे को ये था कि मैं कहा जब तक कोई कंफर्मेशन आपके थ्रू ना हो तो
0: नहीं है,
1: ऐसा नहीं।
2: तो चलिए मिसेस बेदी, आपको आपकी जानकारी मिल गई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने मिसेस बेदी ने बात करी, ओल्ड एज पीपल हैं, अगर ओल्ड एज में अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली और क्या किया जाता है?
0: ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर हो जाए मैडम, तो मैं कहूंगा 100% पेशेंट्स में एक ही अप्रोच होनी चाहिए सब डॉक्टरों की, कि उस फ्रैक्चर को ऑपरेट करके पेशेंट को खड़ा किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होता है ये चोट के कारण ही नहीं टूटा है, ये कमजोर हड्डियां जो हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इस कारण भी फ्रैक्चर हो जाता है। अगर इसमें हम प्लास्टर करें या ट्रैक्शन लगाएं तो लेटे रहने के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे बेड सोर हो जाएगा लेटे रहने से, पैर में पिंडलियों में खून जमा हुआ है, जमा खून ब्रेन में जाके ब्रेन क्लॉट करेगा, कहीं गड़बड़ करेगा, लेटे लेटे यूरिन इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो कॉम्प्लिकेशन इज मच हायर इन दोज पेशेंट्स विच वर नॉट ऑपरेटेड। तो अच्छे रिजल्ट उन्हीं पेशेंट्स में है जिसमें रिस्क उठा के जल्दी से ऑपरेशन किया जाए, ताकि पेशेंट की एक्सरसाइज और चलना जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि बेड रिडन कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी इस एज में पकड़ लेती हैं।
2: और अगर जैसे कमर की हड्डी की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करी जाती है?
3: कमर की हड्डी के जब फ्रैक्चर होते हैं, पहली बात तो ये या तो किसी हाई एनर्जी ट्रॉमा से, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट है, उससे हो जाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेशेंट के अंदर जो फर्श गीला हो वहां स्लिप करके गिर के, जैसे ओल्ड एज पेशेंट मंदिर जाते हैं फर्श गीला हो वहां गिर जाते हैं, वहां फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इन कंडीशंस के अंदर आमतौर तो वैसे जहां पेशेंट दर्द बताता है उस जगह के पार्ट का एक्सरे लेकर पता चल जाता है कि मरीज को फ्रैक्चर है कि नहीं। पर जब कई बार हड्डी बहुत कम पचकी होती है जहां पे अभी हमें पता नहीं चलता, तो उस कंडीशन के अंदर हमें MRI करवा लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है। ये तो बात होगी कि कंफर्मेशन कैसे करना है, नंबर वन। नंबर टू, जब कमर की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, इस कंडीशन को कमर की हड्डी के पीछे ही जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है पीछे स्पाइनल कॉर्ड आती है, इट इज जस्ट लाइक केबल विच कैरीज द करंट टू होल ऑफ द बॉडी। अगर हमें इसके अंदर उस केबल के ऊपर, उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, वैसी कंडीशन हो जाती है। उस चीज को बचने के लिए जब भी कमर का फ्रैक्चर होता है पेशेंट को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कहा जाता है। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट मीन्स टॉयलेट भी आपको बेड पे ही करना है। अब रहेगी उसकी बात मैनेजमेंट की। अगर तो ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमें कंजर्वेटिव मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, उस कंडीशन के अंदर कुछ ब्रेसिस बना दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर साइट, जैसे टेलर्स ब्रेस है, उस तरीके से अंदर ब्रेस पहना के पेशेंट को कहा जाता है कि कम से कम बिस्तर के अंदर 6 से 8 हफ्ते आपको बिस्तर के अंदर ही रहना है, लैट्रिन पेशाब भी आपको बिस्तर पे ही करना है, तब की हड्डी थोड़ी स्ट्रांग नहीं हो जाती। नहीं तो बिना स्ट्रांग किए अगर हड्डी नहीं जुड़ती, पेशेंट खड़ा होता है, नसों पे दबाव पड़ेगा, तो जैसे पैरालिसिस इस कंडीशन जैसी हो जाती है वैसी कंडीशन हो सकती है। अगर जिस कुछ कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर जब वहां पे फ्रैक्चर होने के कारण जो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स हैं, बट स्पाइन के फ्रेगमेंट्स हैं, वो पीछे डिस्प्लेस होकर पीछे नसों को चुभोते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उस कंडीशंस के अंदर हमें इसको ऑपरेशन करने के उस प्रेशर को खत्म करना पड़ता है और उसके अंदर हमें प्लेट पेच भी लगाने पड़ते हैं। पर कई बार आज की डेट में अब लेटेस्ट जो मॉडलिटी आई है जिसके अंदर इतना कंप्रेशन नहीं है और पेशेंट को पेन काफी ज्यादा है, इस कंडीशन के अंदर हम लेजर वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी कहते हैं, काइफोप्लास्टी कहते हैं, वेसलप्लास्टी कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम लेजर दूरबीन के नीचे देखते हुए एक इंजेक्शन लगा देते हैं, सीमेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो वर्टिब्रल बॉडी यहाँ फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जाता है, फ्रेगमेंट्स फिलने बंद हो जाते हैं, पेशेंट को हम जल्दी चला सकते हैं, उसको बेड रिडन नहीं होना पड़ता।
2: एक

0: शोल्डर एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेस अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। और बाकी अपना खान पान में दूध, दही, पनीर, फल, सलाद का ध्यान रखेंगे। वाइटामिन डी की जो नेचुरल डाइट है वो है बॉइल्ड एग्स, फिश एंड सनलाइट। अगर आप ये सब का सेवन नहीं हो पाता है तो विटामिन डी, कैल्शियम डॉक्टर से मिलके वो भी लें, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से आप ये सब चीजें कर पाएंगे।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, कैसा खान पान रखे और कैसे सुरक्षित लग रहे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है जहां पर और प्लास्टर नहीं लग सकता, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
2: हाँ, कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि रिब्स हो गई, रिब्स में पसलियों का जो फ्रैक्चर होता है, कॉलर बोन का भी फ्रैक्चर होता है, तो इसमें भी प्लास्टर नहीं करते हम। रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स में प्लास्टर नहीं किया जाता। टेल बोन जो है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा, कॉक

0: 6, वहां भी प्लास्टिक की जरूरत नहीं होती है, ना कर सकते हैं। कूल्हे की हड्डियां भी टूट जाएं, उसमें अगर प्लास्टर कर दें तो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें भी प्लास्टर इलाज नहीं है इसका। बच्चों में तो फिर भी ठीक है, कूल्हे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स में हम प्लास्टर कर देते हैं, स्पाइका कर देते हैं, पर बड़ों में ये संभव नहीं हो पाता। तो इनके जो इलाज हैं वो शुरुआत से शुरू करता हूं मैं, जैसे गर्म पट्टी बांधी, रेस्ट किया, थोड़ा समय दिया, अच्छा खान पान किया, तो उन चीजों से हड्डियां जुड़ जाती हैं समय के साथ। ये ध्यान रहे, फ्रैक्चर जो है हम डॉक्टर्स लोग इतने नहीं जोड़ते जितने पेशेंट खुद जोड़ता है। पेशेंट का अच्छा खान पान, अच्छी हीलिंग, जो उसको एंसेस्ट्रल एसेट मिला है, उसको पुश्तैनी जो हड्डियां जोड़ने की हीलिंग की पावर मिली है, उससे हड्डियां जुड़ती हैं। हमारा तो काम उसे सही राह दिखाना है जब तक वो जुड़े ना, ठीक है ना। वी ओनली असिस्ट द नेचुरल हीलिंग, वी कांट फाइट विद द नेचुरल हीलिंग। तो गर्म पट्टी बांधना, सिकाई करना, रेस्ट देना, इन चीजों से जुड़ जाती है। कॉक्सिक्स रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो ज्यादातर में तो रिब बेल्ट पहनने से काम चल जाता है, बड़े रेयर केसेस में ऑपरेशन वगैरह करने की नौबत आती है। कॉक्सिक्स का जहां तक बात है तो खड़े होने और चलने में भी प्रॉब्लम है, तो इनके लिए बैठने के लिए एक सीट आती है, कॉक्सीडाइनिया सीट, ठीक है ना। ऐसे ऐसी सीट पहने तो दो महीने में लगभग ये हड्डी जुड़ जाती है, ठीक है। कूल्हे की जो हड्डियां टूट जाएं इसमें ट्रैक्शन लगा सकते हैं, छोटा मोटा फ्रैक्चर है रेमाए वगैरह का पेल्विस में, तो स्किन ट्रैक्शन विल बी सफिशियंट। उस पैर में खिंचाव लगा दिया 2 किलो का 3 किलो का, तो 3-4 हफ्ते में वो काफी हील हो जाता है। लेकिन कूल्हे की हड्डी जो टूटी है तो उसमें ऑपरेशन की ही ज्यादा जरूरत होती है। ऑपरेशन करके प्लेट लगाई जाए, स्क्रूज डाले जाएं, या जैसे अभी बेदी जी का फोन आया था, उनका इंटरकैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था जो जिसमें जुड़ने की संभावना नहीं होती है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब चीजें हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये था कि डॉक्टर साहब से कि जैसे हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, या जैसे लेंथ होती है हड्डियों की, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके अनुसार ही उनके बच्चों के कद होते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए या कुछ मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम हड्डियों को?
0: हाँ देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन में दो पार्ट है आपने, एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या किया जाए, दूसरा आप हाइट के बारे में पूछ रहे थे, हाइट कैसे इंक्रीज की जाए।
2: हाँ हाँ हाँ,
0: आप उत्तराखंड से हैं?
2: हाँ हाँ।
0: तो पहाड़ी लोगों की हाइट वैसी कम होती है।
2: हाँ, जैसे पेरेंट्स होते तो उन्हीं के अनुसार ही बच्चे होते हैं।
0: नेचर ने ऐसा बनाया है।
2: अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर रहना है।
2: हाँ।
0: पहाड़ों पर रहने वाले जो बाकी भी जानवर भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, वो भी ज्यादा हाइट वाले नहीं होते, ठीक है ना। वहां आपको जिराफ नहीं मिलेंगे, कैमल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कम हाइट वाले मिलेंगे। नेचर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गिरें कभी तो कभी इन्हें चोट ना आए ज्यादा, ठीक है ना। तो हड्डियों की मजबूती के लिए तो सबसे बढ़िया कैल्शियम है, जिसके सोर्सेज है ही हमारे पास दूध, दही, पनीर। विटामिन डी है ही, विटामिन डी के सोर्सेज है सूर्य की रोशनी, एग और फिश, ठीक है
2: ठीक है ठीक है।
0: और ये सब चीजें आप ये ना सोचें कि ये सब खाना पीना मुंह में डाल लिया हमने, पच गया तो हमारी हड्डियां मजबूत हो गई। मजबूती के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत जरूरी होता है, तभी वो कैल्शियम हड्डियों में जाके जमा होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब रही बात आपने जो कहा था, जो हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल चीज इतना ध्यान रखें कि विटामिन डी कैल्शियम अच्छा रहे जब बच्चा लंबा हो रहा है, जब उसकी हाइट गेन हो रही है, वो गेम्स खेले, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी चीजें खेलने से थोड़ी हाइट विटामिन डी लेते हैं तो अच्छी निकल आती है। लेकिन जो हेरिडिटरी है किसी का, जो हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, कोई ऑपरेशन की संभावना है, तो ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, तो कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एलिजा राव होता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के हम हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, साल तक चलने वाला प्रोसेस है। कभी टांग की हाइट लंबी करेंगे, फिर उसके बाद थाई की हाइट लंबी करेंगे, तो उसमें भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक कर सकते हैं। अगर हम पैरों की हाइट ज्यादा लंबी कर दें और स्पाइन की हाइट कम है तो मिसमैच भी हो जाता है, देखने में भी सही नहीं लगता है, ठीक है। फिर हार्मोन थेरेपीज भी बच्चों में दे देते हैं, ग्रोथ हार्मोन दे दिया ताकि उसकी हाइट बढ़े, उसमें भी थोड़ा सा खतरा रहता है। ग्रोथ हार्मोन जब देते हैं तो सेक्स हार्मोन जो है वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बच्चे में, जो बच्चे अभी मैच्योरिटी अटेन नहीं करे हैं, जिनकी उम्र 13-15 साल से कम है, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के भी बच्चों का डॉक्टर देख के या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख के इस बारे में सोच सकता है।

0: एक मैसेज हमारे पास, ये है जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फूड टू मेक ब्रोकन बोन टू क्योर इटसेल्फ?
1: See, the bones are made up of the protein as well as the calcium. So the high protein intake means if the, you are the vegetarian, take a lot of pulses, cereals, sprouts, cheese, milk and milk products. And in the non-vegetarian, you can take the egg along with the green leafy vegetables, non-veg also. And exercises and all these things will help in to strengthen the bone.
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम, दोनों डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। महिलाओं में कमर का दर्द एक आम बीमारी है, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती अक्सर महिलाएं, तो दोनों डॉक्टर इस पर क्या कहेंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: ये सही कहा आपने, महिलाओं में कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है थोड़ी मर्दों की अपेक्षा में थोड़ी अधिक ही होती है, ठीक है। कमर दर्द के कई कारण हैं, हमारे पेशाब की जगह का इन्फेक्शन या फिर गर्भाशय की कोई भी दिक्कत हो, इवन किडनी का भी जो पथरी है या इन्फेक्शन है वो भी सब कमर दर्द करती है, ठीक है ना। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो लेडीज में है काफी, इसके बारे में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये रूल आउट कर लें नहीं है, तो फिर आता है कि हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जिससे कमर दर्द होती है, तो उसके लिए कमर के व्यायाम करना, सही पोस्चर बैठने का होना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं जिनसे ठीक रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कई बार है बच्चे हैं या बड़े हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो गिर गए, उनकी फिंगर्स पे लग गए, शोल्डर्स में लग गई, समझ में नहीं आता फ्रैक्चर है या दर्द है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें और इमीडिएटली क्या करें?
1: बच्चों में खेलते वक्त चोट लग जाना और फ्रैक्चर्स हो जाना एक आम सी बात है। इस कंडीशंस के अंदर अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हम चमड़ी कटती है, चोट लगती है, खून बहता है, इस कंडीशन के अंदर खून नहीं बहा पर अंदर तो खून बहा ही, जिसकी वजह से वहां पे नीलापन आ जाना, या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो वहां पे टेढ़ापन आ जाना, ये सब चीजें हैं जो सस्पेक्ट करती हैं फ्रैक्चर है। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए, आइस पैक लगानी चाहिए, ना कि हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए। उस कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन से, आइस पैक से सूजन कम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे उस चीज को हम इमोबिलाइज करें लकड़ी के डंडे से, इंच से, और इन कंडीशन जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर्स है डंडे से बांध दें, अगर नहीं है तो दूसरे लिम्ब के साथ ही किसी कपड़े से बांध दें, और उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाकर वहां पे एक्सरे करके डॉक्टर की आगे सलाह लें। और अगर फ्रैक्चर है तो आमतौर पर जैसे पहले बताया था कि बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स के कंडीशन में प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ कंडीशन जैसे एल्बो फ्रैक्चर्स, जो फ्रैक्चर नोटोरियस फ्रैक्चर्स हैं, जो कई बार प्लास्टर लगे लगे भी बाद में अंदर ही अंदर टेढ़ापन वापस आ जाता है, इन कंडीशंस के अंदर भी हम कई बार चांस लेते हैं प्लास्टर करने के बाद हम सीरियल एक्सरेज लेते हैं, मींस एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद एक्सरेज लेते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि प्लास्टर लगा तो दिया पर प्लास्टर लगे लगे भी हड्डी अंदर गलत ढंग से तो नहीं जुड़ रही। तो अगर फ्रैक्चर्स, अगर एक्सरे करने के बाद फ्रैक्चर्स नहीं हमें नजर आता, इट मींस पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या लिगामेंटस इंजरी है, उस कंडीशंस के अंदर हम कोई गर्म पट्टी या स्प्लिंट बांध देते।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्ते मैम, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी,
3: संजीव कुमार चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न मैम ये है कि एक दो दिन से ना मेरे जो जॉ की हड्डी है, जबड़े की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है राइट साइड पे।
2: ठीक है जी, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी ना? कोई चोट नहीं लगी?
3: नहीं सर, कोई चोट नहीं लगी।
2: आपके अंदर के दांतों में तो नहीं कोई सड़न या कीड़ा टाइप इस तरह से?
3: नहीं सर।
2: कई बार मोलर टीथ के कारण भी यहाँ पे दर्द होती है, बाकी हाथों पैरों के जोड़ों में कोई सूजन दर्द ऐसा नहीं?
3: नहीं सर।
2: और क्योंकि आपको बड़े थोड़े टाइम से ही है, दो दिन से ही है ये अभी?
3: पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर।
2: हाँ,
3: आज तो मेरे से खाना भी नहीं खाया गया।
2: हाँ, तो अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे एक वायरस इन्फेक्शन हो जाता है हमारे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैरोटिड में, कई बार मंप्स भी हो जाते हैं, इस कारण भी जो है ये दर्द हम जॉ की तरफ समझते हैं, तो इस बारे में भी किसी डॉक्टर को दिखा लें, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी मेडिसिन डॉक्टर हो वो देख लेगा। रही बात आपके जो जोड़ होता है, जबड़े का जोड़ होता है जो,
3: वही दर्द हो रहा है,
2: अगर वहां दर्द है तो कई बार गठिया रोग का भी लक्षण होता है ये, इसमें हम यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर, ये सब चीजें,
3: यूरिक एसिड की मेडिसिन लेता हूँ सर मैं।
2: हाँ, तो एक गठिया रोग है आपको। खैर चलो, यूरिक एसिड की वैसे ही कोई ज्यादा पसंदीदा जगह नहीं है, पैरों की तरफ ज्यादा दर्द करता है यूरिक एसिड, लेकिन आपको जबड़े में हो रहा है तो फिर भी एक बारी एक्सरे करके देख लेंगे, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें।

0: बहुत सारे लोगों को गलत ढंग से टीवी देखना, मोबाइल देखना, किताबें पढ़ना, अपनी हथेली का सा जोर पड़ जाता है जबड़े पे पढ़ते लिखते वक्त, तो उससे भी होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को रिब बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
0: रिब बोन मैडम ये मूवमेंट वाली बोन है, इंसान जब सांस लेगा तो एक मिनट में लगभग 18 बार वो बोन हिलती ही रहेगी, वो कभी उसकी मूवमेंट आप रोक नहीं सकते। तो मगर एक अच्छी बात है कि इसमें अच्छी हीलिंग हो जाती है, तो 90% से भी ज्यादा केसेस में रिब बेल्ट दे देते हैं हम लोग, जैसे कमर की बेल्ट आती है, ऐसे पसली की बेल्ट आती है, उससे इमोबिलाइज हो जाता है और वो हील हो जाता है और अच्छा खान पान, ये हीलिंग इन चीज सब चीजों से ठीक हो जाता है। बड़े रेयर केसेस में रिब का कोई शार्प फ्रेगमेंट टूट के अंदर फेफड़े के इस पे चुभ जाता है तो उसमें सांस में दिक्कत आ जाती है, तो इमरजेंसी वाली बात भी बन जाती है, उन केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। कई की केसेस में रिब में जोड़ने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स एंड वायर्स भी आती हैं, उनसे भी जोड़ी जाती हैं, पर 90% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती।
1: जैसे कि आज हम बात करें फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट्स पर, तो क्या कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं कि जिसे जल्दी क्योर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए?
2: मैम, सर्जरी जो होती है वो फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है। हमारा पर्पस है हड्डी को जोड़ना, हड्डी को जोड़ना फ्रैक्चर सर्जरी तक करी जाती है। जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स को हम नॉर्मल पोजीशन में अलाइनमेंट में नहीं ला पाते प्लास्टर की वजह से, अदरवाइज सर्जरी हमेशा फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है, क्योंकि सर्जरी के अंदर जब स्पेशली हम सर्जरी में जब फ्रैक्चर को खोलते हैं प्लेट वगैरह लगाने के लिए, जब हड्डी टूटने के बाद अंदर जो खून इकट्ठा होता है जिसको हम हिमेटोमा कहते हैं, वो हड्डी जोड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। लेकिन जब हम सर्जरी करते हैं प्लेट वगैरह लगाते हैं तो हिमेटोमा ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको डेट डिलेज द हीलिंग। बट इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आजकल हम नीलिंग करते हैं, जिसको हम दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कह लीजिए, उसमें हम दूरबीन के द्वारा हड्डी को बिठा के खोखली हड्डी के अंदर अंदर रॉड डाल देते हैं और जिस जगह पे फ्रैक्चर होता है उस जगह पे इंसिजन नहीं दिया जाता और जो अंदर हिमेटोमा कलेक्ट होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता, तो इससे हीलिंग डिले नहीं होती। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, यहां पे हम फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं बाय द इसको कहते हैं इंट्रामेडुलर नीलिंग या इंटरलॉकिंग नीलिंग कहते हैं। बट इन केस ऑफ द हिप फ्रैक्चर्स जिसके अंदर यहां पे 60 साल से उम्र ज्यादा होती है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे हड्डी को जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। अगर जुड़ भी जाए तो हड्डी में चूल्हे का खून का दौरा खत्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उस कंडीशंस के अंदर 60 साल की उम्र के बाद और जोड़ के अंदर का फ्रैक्चर जिसको इंट्रा कैप्सुलर कहते हैं, उसमें जोड़ को बदल कर नया जोड़ डाल दिया जाता है। अगर 60 साल से उम्र से कम हो तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
1: तो फ्रैक्चर या के बाद जो जैसे प्लास्टर है वो खुल जाता है या फिर ऑपरेशन के बाद का, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है?
0: ये सारी चीजें डॉक्टर के एडवाइस से ही फॉलो होती हैं। ज्यादातर केसेस में तो हम प्लास्टर निकलने के बाद जो लिंब है हाथ या पैर वो स्टिफ मिलेगा हमें, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का एक कोर्स जरूर करना पड़ता है। वो डॉक्टर गाइड करता है ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको की कौन कौन सी देनी है, कैसी सिकाइयां करनी है, कितनी मूवमेंट किसकी रेंज में लानी है। ज्यादातर केसेस में 3-4 हफ्ते में फुल मूवमेंट आ जाती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी की आपने बात करी, तो फिजियोथेरेपी या व्यायाम कितना जरूरी है और ये रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: देखिए, हमारे इसमें कहावत है कि सक्सेस ऑफ ए गुड ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। हम कितने भी अच्छे से हमें जोड़ दें हड्डियां, जोड़ उसकी अच्छी मूवमेंट के लिए, अच्छी वर्किंग में आने के लिए अच्छा व्यायाम बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा पैरों से आता है, क्या सही है? क्या करें जिसे एजिंग लेट आए बोन्स को फिट रखने में? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
2: राखी जी, देयर इज नो मेडिकेशन इन द वर्ल्ड एज सच जो एजिंग प्रोसेस को रोक सके। एजिंग हैज टू अकर विद टाइम इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, टू स्ट्रेंथन द बोन, यस, वी कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड प्रोटीन्स एंड गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद द सन एक्सपोजर एंड द विटामिन डी।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में जैसे कि आपने बताया था, तो ये हमें कितना लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए जिससे हम अपनी बोन्स मजबूत रख सके? कई बार होता है कि कहते हैं कि बोन्स

0: वीक हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कमजोर बोन्स हैं, इसलिए चटक चटक कई बार आवाज भी आती है?
1: नहीं, ये जो आवाज आती है ये अपने जो कहते हैं वो ऐसा नहीं, कई बार बहुत सारी तो जो जोड़ों में कड़ाके निकालते हैं, जॉइंट की मूवमेंट्स आती है, वो तो साइनुअल फ्लूड में एयर बबल्स बनते हैं उसके कारण होती है। लेकिन जो दूसरी आवाजें आती हैं, जो एब्नॉर्मल साउंड्स हैं, वो ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जोड़ घिस के हड्डी बढ़ जाए, सब इन कारणों से आती हैं। तो उसके इलाज हैं, जैसे कि ब्रेसिस पहन लो, सिकाई करें, कई की केसेस में जहां जोड़ों में ज़्यादा आवाजें आ रही हैं, पेन है, इमोबिलिटी, ज़्यादा चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक्सरे में डॉक्टर देख रहे हैं जॉइंट स्पेस खत्म हो गई है, तो ऐसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहां नहीं कर पा रहे हैं उनमें ब्रेसिस पहना के एक्सरसाइज करा के काम चलता है।
0: अच्छा, कई बार होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कहते हैं कि इसकी बोन्स कमजोर है, किसी की कहते हैं बोन्स हैवी है, तो क्या डिफरेंशिएट है ये?
1: नहीं, बोन कमजोर और हैवी का ऐसा नहीं है, ज्यादातर तो कॉर्टिको मेडुलरी रेशियो एक्सरे में देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है भाई, इसमें बोन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, जिसमें कॉर्टेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसमें मेडुला ज्यादा वाइड है, उसमें बोल देते हैं। डॉक्टर जी ने आप कुछ बताना चाहिए बारे में?
2: ये देखो, जो बोन्स वीक हैं या स्ट्रांग हैं, बल्कि मुझे बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि अमीर माँ बाप के बच्चे घरों में रहते हैं, सन एक्सपोजर नहीं होता, तो उनमें विटामिन डी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिकेट्स ज़्यादा होता है। गरीब बच्चों के माँ बाप के बच्चे, झोंपड़े के बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में रहते हैं, विटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है, चाहे वो दूध कम पीते हैं लेकिन वो उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, विटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उसमें रिकेट्स के चांसेस कम रहते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि फ्रैक्चर होने से ठीक होने तक की जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले तो उसे इमोबिलाइज किया जाए, उसे मूवमेंट कम करी जाए, ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इधर उधर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को ना डैमेज करें, नर्व्स, मसल एंड बोन्स को डैमेज ना करें। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने इलाज बताया, भले प्लास्टर बताया है तो प्लास्टर की पूरी केयर रखें, प्लास्टर के अंदर गीला ना करें, पानी ना जाए, एक्सरसाइज जो बताई है वो बराबर करें, डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन डी बराबर लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया आपके, तो ऑपरेशन के एडवाइसेस अलग हैं, इस किस फ्रैक्चर में वेट देना नहीं है, किसी में एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तो हीलिंग अच्छी आनी आनी है।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये पूछते हैं कि फ्रैक्चर हीलिंग में मेडिकली हमें कितना समय लगता है?
1: फ्रैक्चर हीलिंग मेडिकली, तो फ्रैक्चर हीलिंग टेक्स 1 ईयर टू हील, ठीक है ना। एक कोई भी हड्डी टूट जाए, 1 साल उसे जोड़ने में, माइक्रोस्कोपिकली उसे 1 साल लगता है जोड़ने में। वो अलग बात है कि हीलिंग के हमें जो साइंस हैं वो एक्सरेज में 1-2 महीने में, 3 महीने में अच्छे दिख जाते हैं, वो तब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट बियरिंग वेट या मूवमेंट अपनी अच्छी करना शुरू कर सकते हैं वो। पर किसी में अगर ऑपरेशन किया है, प्लेट, रॉड, स्क्रू डालना पड़ी है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके, तो वो निकाली तभी जाए जब वो फ्रैक्चर हील हो जाए अच्छा, जो कि 1 साल के बाद होता है।
0: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो
3: जी। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा कहना कि ऐसा माना गया है कि घुटने में कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो वो 100% ठीक नहीं होता। अगर वो डॉक्टर को भी चोट लग जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो इस बारे में आपसे कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
1: देखिए, ऐसा है कि घुटने की चोटें वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, मैं 2 प्रकार आप मान के चलिए। एक तो जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिर्फ मेनिस्कस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, या मेनिस्कस गए हैं जो रस्सी बोलते हैं, ठीक है ना, ACL, PCL, मेनिस्कस जो खेल कूद में ज्यादा टूटते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल या कोई भी गेम्स खेलें तो मेनिस्कल इंजरी हो गई, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई, तो ये ज्यादातर आपस अपने आप जुड़ते नहीं, क्योंकि इनमें खून का प्रवाह नहीं होता। जिसमें खून का प्रवाह नहीं, वो चीज नेचुरली हील होगी नहीं। ऑपरेशन करके हम भी वो उसे जोड़ेंगे नहीं, हम उसे रिप्लेस करेंगे। कोई मेनिस्कस है या क्रूशिएट टूटा है तो वो टेंडन से, लिगामेंट से रिप्लेस किया जाएगा, तो और रिप्लेस करने के बाद फिजियोथेरेपी करके पूरा आप नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल अपनी एफिशिएंसी पे, वर्क पे आ सकते हैं कुछ महीनों में। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी आती नहीं। अब दूसरी इंजरी हुई फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स में भी ऑपरेशन करके आप अच्छी हीलिंग 1-2 महीने में अच्छी आप कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि पूरी ठीक नहीं होता है।
0: तो डॉक्टर साहब, अलग अलग फ्रैक्चर्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कि अगर कोई घर में है, काम कर रहा है, फिसल गया, कोई रास्ते में जा रहा है, उसके एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
2: डिफरेंशिएट

0: का मतलब जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लो एनर्जी ट्रॉमा एंड द हाई एनर्जी ट्रॉमा। लो एनर्जी ट्रॉमा बेसिकली वहाँ होता है जब हमारी बोन्स वीक होती हैं, और आमतौर पे जैसे इस आम जब बोन्स वीक होती हैं, कलाई का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर, दीज आर कॉमन फ्रैक्चर्स विच अकर स्पेशली इन द फीमेल्स बिकॉज ऑफ द इन द मेनोपॉज, बिकॉज द हार्मोन डेफिशिएंसी, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें फ्रैक्चर होने के जी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब रोड पे जाते हैं तो देता हाई एनर्जी ट्रॉमा और फ्रैक्चर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है।
1: तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जैसे पहले बताया, हड्डियां जो हैं हमारी कैल्शियम से बनी हैं और प्रोटीन से बनी हैं। तो कैल्शियम के लिए हमें दूध और दूध की बनी चीज़ें विदाउट फैट के, अगर हम पनीर इज नॉट सो गुड, डबल टोन दूध पीना चाहिए, उसी के बना पनीर लेना चाहिए, उसी के बने दही और छाछ लेनी चाहिए। बाकी रही बात प्रोटीन की, वेज लोगों के लिए जैसे है सोयाबीन है, प्रोटीन दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब लेनी चाहिए। और नॉन वेज लोगों के लिए एग है, मीट लेनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइजेज, सन एक्सपोजर ये जरूर कर लेना चाहिए। और हमें बाकी जो को मॉर्बिड कंडीशंस लाइक द डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, और अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर एड ऑन करते हैं। इन चीज़ों से हमारी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं और आगे हमारी टेंडेंसी रहती है लो एनर्जी ट्रॉमा के साथ भी फ्रैक्चर्स होने की। जैसे मंदिर में जाते हैं ओल्ड एज, वहाँ फिसल गए, घर के अंदर पोछा लगाया वहाँ फिसल गए, जब वेरी मोड कॉमन मोड ऑफ इंजरीज हैं, ओल्ड एज पीपल सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के अंदर गिर जाते हैं, दे डेवलप फ्रैक्चर्स।
1: तो आप बच्चों को और बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो अपनी हड्डियों की सुरक्षा कर सके, और बच्चे जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और बुजुर्ग जो फिट रहें?
2: देखो, बोन हेल्थ के लिए तो सबसे खान पान का ही खास ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस करें, सनलाइट एक्सपोजर रहें, तो इससे बोन्स आपकी अच्छी रहेंगी। जो बोन्स के लिए ठीक नहीं है, फ्रैक्चर हीलिंग के लिए भी जो ठीक नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, एक तो हो गया पेन किलर्स, दर्द की दवाइयां जो हैं दे डिले द बोन हीलिंग, तो दर्द की दवाइयां जितनी कम हो सके ना लें, और इन चीजों का खास ध्यान रखें तो बोन हेल्थ आपकी सही रहेगी। और टोबैको का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टोबैको आल्सो डिलेज द हीलिंग।
1: तो डॉक्टर विनय, तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देंगे?
0: श्रोताओं के लिए मैं मैसेज यही है कि जैसे पहले ऑलरेडी बता दिया गया है हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ ऑफ द बोन्स, वो तो आपको बता ही दिया है। मेडिकली एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा, जब भी कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है फ्रैक्चर्स के अंदर ऑपरेशन करवाने की, उसको फॉलो करें। ये अब हम ना मान के चलें कि एवरी फ्रैक्चर रिक्वायर्स प्लास्टर ओनली, कि उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। कई सारे फ्रैक्चर्स में जैसे पहले बता दिया गया है, फ्रैक्चर्स ऑपरेशन किए बिना ठीक नहीं होते। या दूसरी बात ये है कि जब कुछ लोग सलाह ना मानते हुए किसी पहलवान के पास या मसाज क्वैक के पास चले जाते हैं, वहाँ मसाज करवाते हैं, स्पेशली एट द एल्बो जो कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं, या प्लास्टर करने के बाद कुछ देर बाद आते हैं, 6 महीने बाद साल बाद आए तो हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी होती है, तो जो कि आगे चल के टेढ़ी हड्डी जुड़ने के कारण बॉडी की सारी बायो मैकेनिक्स को खराब करती है। वहां पे फिर हड्डी को काट कर सीधा करना, प्लेट लगाना काफी मुश्किल हो जाता है।
1: और डॉक्टर अजय, आप क्या मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
2: मेरा ये कहना है, अच्छे से अपना एक्सरसाइजेज और खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर्स की एडवाइस पूरी फॉलो करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की चर्चा से फ्रैक्चर से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ध्यान रखिए, हड्डियां हमारे शरीर का आधार हैं, सावधानी दुर्घटना से बचाती है और समय पर उपचार जल्द स्वस्थ होने का रास्ता दिखाता है। किसी भी चोट को हल्के में ना ले और जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह ले। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर अजय शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर विनय सिंगला ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार 7:00 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार GIT टैग वाला मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया है कि UPI लेनदेन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निशुल्क बना रहेगा। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण स्थगित की गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चलिया कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक Under-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। मेडिकल हिस्ट्री में अहम रोल प्ले करते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप से न सिर्फ किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को भी बताने में भी काफी मदद करती है। हेल्थ चेकअप के द्वारा डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में अच्छी समझ मिलती है, साथ ही उसे डॉक्टर मरीज की बॉडी और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाइयां और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लोग क्यों नहीं कराते रेगुलर हेल्थ चेकअप? अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपने बजट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आम आदमी के रेगुलर हेल्थ चेकअप न कराने के पीछे उसका बजट एक कारण है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप के फायदे के बारे में जागरूक तो होते हैं, लेकिन वो इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके हेल्थ प्लान में शामिल नहीं होता है। दरअसल अधिकतर हेल्थ प्लान पैथोलॉजी टेस्ट जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट, हार्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। ऐसे में लोग अलग से इन्हें कराने से कतराते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। तो दोस्तों, आप सुनिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने के फायदे। अपने बीमार होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों और जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। बीमारी का पता लगने पर इलाज और उपचार में मदद मिलती है। मौजूदा स्थितियों की बारीकी से निगरानी करके जटिलताओं के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। महंगी चिकित्सा सेवाओं से बचकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डॉक्टर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जो इलाज को आसान बनाती है। नई चिकित्साओं और तकनीक की जानकारी मिलती है। तो इतने फायदे हैं दोस्तों, और बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनिए लम्हे प्रोग्राम चेतन से।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। एक महिला को परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है और घर के हर सदस्य की देखभाल, हर चीज और हर किसी की देखभाल करती है। एक महिला घर की हर जरूरत और अनुरोध

को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है। कई बार इस वजह से महिलाएं अपने सेहत को भी नजरअंदाज कर देती है, इसलिए एक महिला को विशेष देखभाल और समय पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराने की आवश्यकता होती है, वे अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रह सके और सेहतमंद रहे। रूटीन ब्लड टेस्ट संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। ये टेस्ट एक महिला के समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। नियमित अंतराल पर परीक्षण करवाने से महिलाएं देख सकती है कि समय के साथ उनका शरीर किस तरह से बदलता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए जागरूक होना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आमतौर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट, एनीमिया परीक्षण, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी सहित अन्य टेस्ट शामिल है। एक महिला साल में 2 बार इन रक्त परीक्षण को करना चाहिए। मैमोग्राम मूल रूप से महिलाओं के स्तनों का एक्सरे होता है। मैमोग्राम स्तनों कैंसर के लक्षण को पता लगाने में मदद करता है। ये महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक महिला को आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए और फिर हर 1 या 2 साल के बाद इसे दोहराना चाहिए। कुछ डॉक्टर आपको 50 साल की उम्र तक मैमोग्राम करने की सलाह दे सकते हैं। ये परीक्षण एक महिला के स्तनों में होने वाले सौहार्दपूर्ण परिवर्तन जैसे गांठ, असामान्य त्वचा और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिला को ये परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। BMD ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है। विभिन्न मशीनों का उपयोग करके बोन डेंसिटी टेस्ट किया जा सकता है। इस सभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हर महिला को समय समय पर जरूर करवाना चाहिए, जिससे सेहत की उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सके और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने RJ चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंट

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक सेवी, डायनेमिक और आज के दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं तीन वर्ड्स यानी स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है ना। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे है, दुनिया उनकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जेन के आज के डिजिटल लेट्स डिटॉक्स में

बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। जी हाँ, ताकि हम सब जो गुस्से की एनर्जी है ना, उसे कहीं ना कहीं इंपल्सिव रिएक्शन नहीं बल्कि माइंडफुल रिस्पॉन्स, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन उसे दे सके। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड इवनिंग।

कांवर दिल में महादेव का नाम, कंधों पे कांवर दिल में महादेव का नाम और होठों पर नमो नमो शंकरा की गूंज, हर कदम भक्ति समर्पण और विश्वास का एहसास बन जाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन और आज लेट्स डिटॉक्स के एडिशन में हम बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है, इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है, बस एक दिन चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए आज कुछ देर के लिए इस फास्ट पेस दुनिया से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना भी सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। डिटॉक्स आज के एडिशन में हम बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। जब छोटी छोटी बातें भी हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने लगते हैं, जब बिना सोचे समझे दिन गए रिएक्शंस रिश्तों में दूरियां पैदा करने लगते हैं, और जब हमें लगता है कि गुस्सा ही हर प्रॉब्लम का जवाब है, जब स्ट्रेस डिसअपॉइंटमेंट अनमेट एक्सपेक्टेशंस और पुराने इमोशनल वूंड्स और अंदर ही अंदर गुस्से की शक्ल लेने लगते हैं, जब हर छोटी बात इरिटेट करने लगती है या हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है असली, क्या ये ट्रिगर सिचुएशन है या हमारे अंदर छुपा कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन। आज मैं और मेरा डेली रूटीन यानी आपका और आपका डेली रूटीन एक छोटा सा इमोशनल चेक इन करेंगे। आज आप अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरा गुस्सा वाकई सिचुएशन के लिए इस सिचुएशन की वजह से है या इसके पीछे कोई पुराना हर्ट स्ट्रेस या इमोशनल ट्रिगर छुपा है। क्या मैं अपने एंगर ट्रिगर्स को पहचान पाती हूँ या पाता हूँ, या हर बार बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। क्या मेरा गुस्सा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या मेरे इनर पीस यानी एनर्जी को और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। अपने इमोशंस को दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ, या उन्हें अनहेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और सबसे जरूरी, क्या मैं अपने गुस्से को, अपना गुस्सा, क्या मेरा गुस्सा मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं अपने गुस्से को समझकर उसे रेगुलेट करना सीख रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आइए थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, अपने एंगर ट्रिगर्स को पहचानते हैं, गुस्से को दबाते नहीं उसकी वजह को समझते हैं। एक गहरी सांस, माइंडफुलनेस और इमोशनल अवेयरनेस के साथ रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से को दुश्मन नहीं एक इमोशनल सिग्नल समझने लगते हैं तभी हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं और जिंदगी की रिदम को सुकून, बैलेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जीना सीख पाते हैं। फिलहाल ये गाना, फिर आती हूँ आपसे बात करने के लिए प्रोग्राम अल्फाजन में और आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में बात हो रही है एंगर डिटॉक्स की।

कविता सेठ की सोरफुल आवाज इस गीत को एक अलग ही रूहानी रंग दे देती है ना। इनफैक्ट ये जो ट्रैक है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस ट्रैक को सुनते वक्त जैसे किसी शहर की भीड़ में कोई अपनी इनर वॉइस सुन रहा हो, अपनी अंदर की आवाज सुन रहा हो। ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक मेलोडी नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल फ्रीडम का एक साउंड ट्रैक है। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। इसके लिरिक्स को अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है या समझा है, आकाशवाणी रेनबो पर अल्फा जैन चैनल सुन रहे हैं आप और लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं एंगर डिटॉक्स की। गुस्से की आग में अक्सर अपने ही जज्बात जल जाते हैं, गुस्से की आग में अक्सर अपने ही जज्बात जल जाते हैं, कभी अपनों पर तो कभी अनजानों पर लफ्ज बरस जाते हैं। पल भर के गुस्से को जरा संभालिए बंधु, थोड़ा सा ठहराव रखिए, कहीं ये जिंदगी भर का अफसोस न बन जाए। गुस्सा एक नेचुरल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है ना। इसके पीछे कुछ इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ट्रिगर्स छुपे होते हैं। कभी किसी की बात दिल को चुभ जाती है, कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है और हम गुस्से का शिकार हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से को गलत तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, एंगर मैनेजमेंट का सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रिगर का मतलब है कोई भी सिचुएशन, पर्सन या शब्द या मेमोरी जो ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि आप किसी चैलेंज को या डेंजर को फेस कर रहे हैं। जैसे ही ये सिग्नल मिलता है ब्रेन को, जी हाँ एक सिग्नल मिलता है तो इमोशनल अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है एमिगडाला। जी हाँ, तो वो बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद जो है कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती है, ब्रीदिंग भी फास्ट हो सकती है। इसी वजह से कुछ एक पल में अक्सर हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। रिसर्च ये भी बताते हैं कि इंटेंस एंगर के दौरान ब्रेन का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, टेम्पररी तौर पर कम इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए गुस्से में किए गए डिसीजंस या बोले गए शब्द बाद में अफसोस का कारण बन जाते हैं और ये हमने देखा भी है ना। और हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गुस्सा अक्सर प्राइमरी इमोशन नहीं होता, बहुत बार इसके पीछे हर्ट, रिजेक्शन, फियर, गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, इनसिक्योरिटी, कभी किसी बात को ना समझ जाने का दर्द भी होता है। ये बहुत सारे इमोशंस छुपे होते हैं, यानी जो बाहर दिख रहा है वो गुस्सा है लेकिन अंदर कहानी कुछ और चल रही है। इसलिए जरूरी है कि हम गुस्से से लड़ने के बजाय उसकी वजह को समझने की कोशिश करें। रिसर्च ये भी बताती है कि नींद की कमी, भूख, क्रॉनिक स्ट्रेस और फिजिकल फटीग, ये जो है ना ये एमिगडाला की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। इस वजह से हम थके हुए और स्ट्रेस्ड होते हैं, तब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है और बहुत बार गुस्से के एक पल में निकले हुए कड़वे शब्द ना हमारे अपनों को चोट पहुंचा देते हैं। जी हाँ, जो हमारे सबसे करीब होते हैं। एक छोटी सी बहस कभी कभी रिश्तों में दूरियां ला देती है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में बोले गए शब्द, दोनों को अक्सर असर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। इसलिए एंगर डिटॉक्स का मतलब गुस्से को दबाना नहीं है। हेल्दी अप्रोच यही है कि हम गुस्से को पहचान

उसकी वजह समझे, उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करें। बात करेंगे आगे भी कि एंगर डिटॉक्स के बारे में। अभी तो बस ये कहूंगी कि अपने ट्रिगर्स को पहचानिए दोस्तों, क्योंकि अवेयरनेस ही एंगर मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल शुरुआत है।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

मेरा घोषाल की आवाज़। ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था ना जिस टूर से, तो मैंने बस इस गाने ने जगह बना ली थी मेरे दिल में। और ये गाना जो है ना, ये सिर्फ रोमांस को सेलिब्रेट नहीं करता बल्कि उस पल को कैप्चर करता है जब किसी की मोहब्बत जिंदगी को एक नया एहसास दी जाती है। जो मोहब्बत में हो, इश्क में हो, प्यार में हो, ये तो वही जान सकता है ना। डिटॉक्स के बारे में आज बात कर रहे हैं हम, लेट्स डिटॉक्स में। अगर आपकी भी कोई कहानी है गुस्से को लेकर, कोई किस्सा है, तो हमसे शेयर कर सकते हैं कि कभी आप अपने गुस्से का ही शिकार हो, या आपके गुस्से को आपने कंट्रोल करके आपने एक समझदारी का डिसीजन लिया हो। 9868107070 पर भेज सकते हैं, 9868107070। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। खामोशियों के पीछे भी एक कहानी होती है, खामोशियों के पीछे भी एक कहानी होती है, और मुस्कुराहट के पीछे कोई परेशानी होती है। मामूशाय गुस्से को दबाइए नहीं, समझा कर संभालिए, दिल के एहसासों को समझदारी से बयां कीजिए। हम अक्सर गुस्से को सिर्फ एक तेज आवाज, आर्ग्यूमेंट से, एग्रेशन से जोड़ते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की। ये गुस्सा हमेशा शोर के रूप में नहीं आता दोस्तों, कभी कभी गुस्सा खामोशी के लिबास पहन कर आता है। इंसान बाहर से शांत, बिल्कुल शांत नजर आता है, नॉर्मल, काम, लेकिन अंदर ही अंदर हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या कोई रिजेंटमेंट को कैरी करता रहता है। अंदर एक तरह का इमोशनल स्ट्रगल चल रहा होता है। इसी को हम साइलेंट एंगर के रूप में समझ सकते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस करते हैं तो ब्रेन का इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम कंटिन्यूसली एक्टिव रह सकता है। एमिग्डाला जो इमोशंस और स्ट्रेस रिस्पांस को प्रोसेस करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अलर्ट मोड में आ जाता है। अगर इमोशनल स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो मूड, स्लीप, एनर्जी लेवल और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान से हमें अपने शब्दों का यूज करना चाहिए दोस्तों। साइलेंट एंगर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल सप्रेशन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इमोशनल बर्डन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब हर्ट, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट को समझने के बजाय हम अंदर ही अंदर दबा देते हैं, तो वही अनरिजॉल्व्ड इमोशन कभी इरिटेशन, एंग्जाइटी, इमोशनल एग्जॉशन या रिलेशनशिप डिफिकल्टीज के रूप में सामने आ सकते हैं। साइलेंट एंगर की सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पता ही नहीं चलता इसका आसानी से। इंसान बाहर से बहुत ही नॉर्मल, कंपोज नजर आता है, लेकिन अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल चल रहा होता है। कभी वो बात करना कम कर देता है, या अपने आप में रहने लगे, या फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगे, या अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहे। ये खामोशी अक्सर इस बात का सिग्नल होती है कि दिल के अंदर कुछ इमोशंस हैं जिन्हें समझने और एक्सप्रेस करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम अपने ही अंदर अंदर गुस्सा दबाते रहेंगे और उसे हेल्दी तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इमोशनल सप्रेशन से स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे एंग्जाइटी, इमोशनल एग्जॉशन, स्लीप प्रॉब्लम्स और कुछ केसेस में सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे चैलेंजेस का रिस्क बढ़ सकता है। इससे जरूरी है कि हम अपने गुस्से को इग्नोर ना करें, बल्कि उसे समझें और सही डायरेक्शन दें। बंधुओं, साइलेंट एंगर डिटॉक्स का मतलब गुस्से को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, अपने इमोशंस को समझना, रेगुलेट करना, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन देना। क्योंकि जो इमोशंस हम समय पर समझ लेते हैं ना, वो बोझ नहीं बनते, वो हमें खुद को बेहतर समझने और जिंदगी को ज्यादा बैलेंस के साथ जीने का मौका देते हैं। फिलहाल ये ट्रैक कह रहा है मुझे प्ले कर दो, तो फिलहाल ये बहुत ही रोमांटिक डुएट है, तो इसको एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह एंड असीस कौर फ्रॉम द फिल्म खेसरी।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर सात के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

वेलकम बैक आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा जी हाँ आपके साथ बातें करने के लिए प्रोग्राम अल्फा जैन में। और लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में हम बात करें एंगर डिटॉक्स की। गुस्सा जी गुस्सा, गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में बोले गए शब्द ओहो बहुत ठेस पहुंचाते हैं, है ना। तो गुस्से को बहुत ध्यान से सोच समझ कर एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी मैसेज आया जैसे कि मैंने कहा कि आप भी अपने कुछ विचार शेयर कीजिए 9868107070 पर। बताइए कि आपने कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करके कुछ अच्छा डिसीजन लिया हो या गलत कुछ हो गया हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मैसेज आया है, राम राम जी, सभी के मुख से निकले शब्द इतना पवित्र हो सकते हैं कोई सोचता नहीं। शब्द ही है जो आरती का हिस्सा बनते हैं, शब्द ही है जो प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, कथा करते हैं। शब्दों की भी एक आत्मा होती है, उसको पवित्र करना आपके हाथ में है। उसको अपशब्द बोलकर कभी उनका मान ना तोड़ें और सदा पवित्र बने रहें। इसके लिए प्रभु से कहे गए शब्द भी आपके हैं, प्रभु इनको भी हमारी तरह सद्बुद्धि ही देना। इतने ही काबिल है हम ये संदेश भेज रहे हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, रोहित खेरा, दिल्ली 9। इतना सुंदर मैसेज भेजते हैं रोहित जी।

सच में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें भाव और असर दोनों होते हैं। प्रभु हम सबको ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दे जो किसी के मन को दुखी ना करे, सुकून करे। राम राम जी। और वैसे भी शब्दों में एक अलग सी एनर्जी होती है, इस बात को महसूस हम करते हैं। अगर आप लोगों ने महसूस किया कि शब्दों की भी अपनी एक एनर्जी होती है और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें ना मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने मन को संभालना चाहिए, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होती है, सामने वाले के मन तक पहुंचने वाली एनर्जी होते हैं। प्रभु हमारी वाणी में प्रेम और सद्बुद्धि हमें बनाए रखे, मैं तो यही कहूंगी। बहुत ही खूबसूरत आपका मैसेज है। और इसी के साथ दोस्तों हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुस्से की लहर जब दिल के किनारों से टकराए, गुस्से की लहर जब दिल के किनारों से टकराए, थोड़ा ठहर जाइए बंधु, सांसों से अपना रिश्ता निभाइए। एक गहरी सांस में छुपा है सुकून का रास्ता, एक पल का ठहराव बदल सकता है दोस्त आपके गुस्से का अंदाज। तो लफ्जों को रोक कर पहले दिल को समझाइए, अपने गुस्से को सही दिशा दिखाइए और फिर जिंदगी के रिदम के साथ अपनी तार मिलाइए। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आता ही है, लेकिन असली चैलेंज ये नहीं कि गुस्सा आए या नहीं, चैलेंज तो ये है कि हम अपने गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं। जब इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन एमिग्डाला जो इमोशन रिस्पांस को एक्टिवेट करता है जल्दी रिएक्ट करने लगता है और हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं या कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा पॉज, एक डीप ब्रेथ, गहरी सांस और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। दोस्तों हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता और यहीं से शुरू होता है एंगर मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन का प्रोसेस। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक डीप ब्रेथिंग टेक्निक्स यानी गहरी सांसें लेना नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करती है। जब हम गुस्से के वक्त धीमी और गहरी सांसें लेते हैं ना तो पैरा सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो बॉडी को के रिस्पॉन्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर उसको रिलैक्स मोड पे ले आता है। ये टेक्निक हार्ट रेट और टेंशन को कम करने में मदद करता है जिससे माइंड को क्लैरिटी मिलती है। सिर्फ कुछ सेकेंड्स के का माइंडफुल पॉज भी ब्रेन का इमोशनल फ्रंट, जी हाँ, एमिग्डाला और लॉजिकल थिंकिंग वाले पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इसे हम इंपल्सिव रिएक्शन देने के बजाय सोच समझ के रिस्पांस देना सीखते हैं और अपने गुस्से को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। गुस्से को मैनेज करने का पहला स्टेप है ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, इंपॉर्टेंट, अपने गुस्से के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर तो होता ही है, या कोई स्ट्रेस होता है, आपने स्लीप नहीं लिया, प्रेशर में हो, फियर हो, डर हो किसी बात का, या आप हर्ट हुए हो। जब हम अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हैं तो हम अपने इमोशंस पर ज्यादा कंट्रोल डेवलप कर पाते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स नहीं है बंधु, बल्कि ये हमारे माइंड को ट्रेन करने के पावरफुल टूल्स हैं। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को तुरंत रिएक्ट किए ऑब्जर्व करें। जब गुस्सा आए तो उस फीलिंग को एक सिग्नल की तरह समझें, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है, ये हम पूछें अपने आप से। ये अवेयरनेस हमें गुस्से के बहाव में बहने के बजाय सिचुएशन को शांति और समझदारी से हैंडल करने की एबिलिटी देता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी एंगर मैनेजमेंट का इफेक्टिव तरीका है। गुस्से के पल में हम खुद से कहें, जी हमें ये कहना भी होगा कि मुझे पहले काम होना है फिर बात करनी है। सिंपल, ब्रेन को इमोशनल रिएक्शन से लॉजिकल रिस्पांस की तरफ ले जाता है। और काउंटिंग टेक्निक, ये तो मेरी मम्मी बचपन से कराती है, जब गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो उस समय वो गुस्सा होता है ना, बस काउंट करना है, आपका शांत हो जाएगा, फिर एकदम से लॉजिकल माइंड काम करेगा, मुझको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना, करके देखेगा। फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी कम्युनिकेशन जैसे मेथड्स भी स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने और इमोशंस को रिलीज करने में मदद करते हैं। गुस्से को दबा देना इसका सॉल्यूशन नहीं है बंधु, क्योंकि अंदर ही अंदर दबाए गए इमोशंस स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को पहचाने, उनकी वजह समझें, उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब गुस्सा कभी नहीं आना बल्कि गुस्से के पल को में खुद को संभालना होता है। जब अपने ब्रेन बॉडी इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो रिलेशनशिप भी बेहतर होते हैं और मेंटल वेलबींग भी इंप्रूव होता है। तो जी एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाइए, अपने गुस्से को सही दिशा दिखाइए और फिर जिंदगी के रिदम के साथ अपनी ताल मिलाइए। और फिलहाल हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम। जी हाँ, तो चलिए अभी हम सुनते हैं गाना, वो गाना जो मुझे अब नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, स्क्रीन थोड़ा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ, करता है, मस्ती करता है, स्क्रीन भी कहता है कि कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना, शांति से हैंडल करना है। तो बस शांति से हैंडल करते हैं और आते हैं आपसे बात करने के लिए।

0: इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं, और इसका जो रियल मैजिक है वो है वोकल्स, जैस्मीन और सतेंद्र के अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवस क्रिएट करते हैं ना। इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहां एक गाना एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ब्लेंड होता है।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

लिए थोड़ा हंस के राम राम जी, फुर्सत नहीं या प्यार करने की, गुस्से के लिए समय कहाँ से लाएं। जैसे सुख को खुशी में जब प्रभु बदलते हैं तो हम समा नहीं सकते, ठीक उसी तरह जब गुस्सा करते हैं तो खुद से अपने दुखों को जन्म देते हैं। फैसला आपका है, आपको क्या चुनना है। प्रियंका जी, कुछ आपने छोड़ा ही नहीं जो गुस्से के लिए नहीं कहा, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जिस पर आप नहीं बता सकते। हमें कुछ गजब का ज्ञान है आपके पास, इसलिए आपको और आपके परिवार को, आपकी परिवार की टीम को नमन है हमारा। रोहित खेरा लिखते हैं थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें यशपाल जी द्वारका दिल्ली से लिखते हैं नाइस टॉक प्रियंका, आई थिंक एंकर फर्स्ट हर्ट्स यू देन समबडी एल्स, सो रियलाइज इट एट द टाइम ऑफ एंकर एंड कंट्रोल इट, वर्क्स विद मी। देखिए यशपाल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, सबसे पहले वो आपको खुद ही हर्ट करता है, ये तो है। और इसी के साथ पंकज अमरावती लिखते हैं कि गुस्सा है तो 1 से 10 तक गिनती करना बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, और ये मेरी मम्मी का बचपन का नुस्खा है सीरियसली। इसी के साथ गुस्सा नहीं करना, गुस्से को बाय बाय फिलहाल। ठीक है गाइस, अपने देश का मान बनाइए और अपने चेहरे पे भी मुस्कान लाइए। ठीक है गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि यह त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाश।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर

0: में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्चस्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल

0: सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductor, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करें

0: करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
3: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
4: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा

0: चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक